आई कह ना जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद मिण सिद्ध ही किने ना पाईया कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया आखण वाला क्या बेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा

सगल समगरी तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गद मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नाउने दयावें ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जरा नाम जपिया वंड के छकिया दे चलाई तेग वाही देख के अमृठ कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक के सां सवासां संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी।

बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में

भगवंत सगल समग्री तुम रह सूत्र तहारी तुम ते हो ऐसो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ दया में ताय सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहिया दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख तलाई तेग बाही देख के अमृत कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सदक के साम सुवासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना।

बोलना जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद राम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना उन्हें दया में ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ नार दा ध्यान तरके बोलना जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी आप जी ने कृपा रहमत की है अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाशमान होके दर्शन दीदार बख्शे हन आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया के पावन स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना आप जिया के भाने में दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहन आपके भाने में बतीत होवे कृपा करो आप जी अपन सेजा से विराजमान होवो संगतां नूं खुशियां बख्शो अमृत वेले जाग ने दर्शन बख्श के निहाल करना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुर

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुर

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

जिन उद्यम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी। अठ सठ तीरथ पुन किरिया

प्रभु कै सिमरन तीर्थ शनानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी प्रभु कै सिमरन सो भला प्रभु कै सिमरन सफल फला से सिमरे जने आप सिमरा ए नानक ताके लागो पाए प्रभु का सिमरन सबते उच्चा प्रभु कै सिमरन उदरय मुच्चा प्रभु कै सिमरन त्रिशना बुझा प्रभु कै सिमरन सबके सुजा प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाहे अमृत नाम अमृत माहे समाए प्रभु जी बसे साधु की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से धनवंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बैमो ताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा विनाशी सिमरन ते लागे जने आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरे से परोपकारी प्रभु को सिमरे तन सदबलहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तन सुख बिहावे प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तन आनंद घनेरे प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अंदर जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबूना झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बेगासन प्रभु कै सिमरन अनहद झुनकार सुख प्रभु सिमरन गंत न पार सिमरह से जन जिन काओ प्रभु मया नानक तिंदन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरनी चौंकुंड जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल आकारा हर सिमरन में आप निरंकार कर कृपा

सुतमी तनापाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल होवे अत भारी हर को राम खिर माहे उधारी अनक पुना चरण करत नहीं तर हर को नाम कोट पापर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख रेरे सगल सटको राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंद ना पर हर का नाम जपत निस्तर अनक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत आगावे जे मार्गे जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहिला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं गोड़ लग बाही नाम जपत है पार पराही

अनुस्कये तो समझे पूरा का बिशन पद गावे गुंग जतन करे तावी सुर भंग कै पिंगुल पर्वत पर भवन नहीं हो तुहावस गवन करतार करुणा में दीन मेहनती करे नानक तिमरी कृपा तरै।

रहत अवर कशवर कमावत मन प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेखना काहू पीर अवर विदेशे आवना करे आवत जावत जनमै बरज सिकंदर बसेंद्र अंकार तिसकी सीख तरा संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पुराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे मन आपे आप कर तन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा बाप सियानम सगल ते रहत सब का जाने आत्म की रहत जिस भावित सिलाई लड़दाए थान धनंतर रया समाए

अष्टपदी जय प्रसाद शती अमृत खाहे तुष्ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद वसे सुख मंदर तसे ध्याए सदा मनंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्यागत प्रलुभावे जय प्रसाद सुख से जय सोई जय मनाठ पहर ताका जस गावि जय जय प्रसाद तु सब कहु माने मुक्ता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरु रहता धर्मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म प्राप जी जब दुर्गे मान पावे नानक पत सेती कर जावे।

ताजेदारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सौप्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी देखी जात सौप्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहै गुरप्रसाद नानक जस कहै जय प्रसाद सुने करण नाद जय प्रसाद वेखे विस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फलै जय प्रसाद परमगत भावे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभ त्याग अबरकत लागो गुरप्रसाद नानक मन जागो।

पामनख होवे। जिस भगव की कीमत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करै नितनीत, मन मंथन अरवे बिशन प्रीत, अर्घे जन हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध राम नाम

इसका बालनाय सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तस भावे सोई फंथियो। कबू ऊच नीच मैं वसै कबू सोख हरंग हरंग हसै कबू नेंद चिंद व्यवहार कबू नेंद चिंद व्यवहार कबू ऊब आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आब मिलावन हार। कबू नृत करे बाबा कबू सोए रहे दिन रात कबू महाक्रोध विकराल कबू

विनाश सबते आप जाने बलवंत घन में जाए बसमंत किसे नबदे आप अहंकारी धर्मराय करे खुवारी गुरप्रसाद जाकर मिटे बिमान सो जन नानक दरगे प्रमान ओट कर्म करे हूं तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनुग तपस्या करे अहंकार नर किशोर के फिर फिर अवतार अनुग जतन कर आत्म नहीं धर्म दरगे को कैसे घवाए आपस को जो पर आगा आवे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मनोए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कश होए तब इसको सुख नाही कोए जब जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे गो बैरी मी तब लग रेचल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन।

कृष्णाईहात तिसका हुक्म पूछ सको तिसका नाम रखंड प्रोहे सिमर सिमर सिम प्रभ सोए नानक बिघन ला गया गोए उस सत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्मल रसनामृत भियो सदा सुहिला कर ले जियो

कृपा करे सो सेवकों किस तरह डरा जैसा सत है सदृष्ट अपने कार्ज में आप समाया सोदत है सोदत है सोदा सिजिया गुरप्रसाद तब तस बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल नै के जन्म है नै किश मरे आपन चलते आप ही करे आपन ज्यामन दृष्ट अंदृष्टा क्या कारी धारी सब सृष्ट आपे आप सकल में आप अनुग जुगत राज थाप उथाप विनाशी नाय किश खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अभे पुरख।

नगापै प्रजापष्टपति जबकारे काशना दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाता बैर ब्रो के संगमात जब इसका वर्ण चेना जब हर सो को किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तमो काम के सोपत पर ब्रह्म आपन खेला भरतीजा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बंद मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शकत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत रह तब गमन ने डर गमन कत डराए आपन जलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपने आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूषित लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब गौन छुटे गौन बंधन बाधे अपने आप आपिय चर्जा नानक अपन रूप आपिय प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन मोक तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश छाल चित्र लगत गौ की जय जो स्वरूपी जो संग समावे।

की हो बख्यान अपन खे लाभ कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक जब अभगत भगत आप जब सरे पासार संत प्रताप दो भाग अपे धन्युन की शोभा उन्हों बनी आपे कौत करे आनंद चो जापे रस भोग अंदर जोग।

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आपे आपे एक आप विस्तार जात सुभावित उपाय अपने भाणे ले समाए तुम ते भिन्न नहीं किशो अपन सो सब जगत परोए जागो प्रभु जीव आप बुझाए सच राम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् गा बेता नानक सगल सृष्ट गा जेता जी जंत्र सब ता के हाथ।

सिमरत मैं देख ससी और सूर नक्षत्र में एक वाणी प्रभु की सो सबको बोले आप अडोला कबू डोला सर्व कला कर खेल है खेल मोलना पाइये गुणे अमोल सर्व जोत में जागी जोत हरियो स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद ब्रह्म का नास नानक दिन में विश्वास संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना हृदय संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सुभजन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता दिसगी रहत सत भजन साधु सब गहत जो जो है सोई सो माने करन राम नार प्रभु जाने अंदर बसे बार भी ओही नानक दर्शन देख सबोई आप सत किया सो सब सत तिस प्रभ ते सगरी उत्पात तिस भाविता करे विस्तार तिस भाविता एक अंगार अनकला लखी न जाय जिस भावित सुलाये मिलाये कम निकट कम न कहिए दुरा पिया पा भरपूर अंतर का साफ जनाए नानत जना

दीनदयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमरना बारंबार नानक जी का ए आधार, उत्तम सलोक साधके वचन अमलीक लाल ए रतन, संत कमावत होत उधार, आप तरे लोके निस्तार।

विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम शनान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मा सगल देवदास सुंदर चतुर्दत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने इवन धान जपै मन कोवे सब जुग में तागी गत हुए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतान केवल हर नाम गोबिंद भगत गय मन विश्राम कोट पराध सा संग मिटाए

गोविंद आख है ईश्वर आख है सद आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कहे कहे उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ताख न सक है के ही के

नमो रोग रोग नम तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो ईष्ट ईष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्व विनाशी अनूपे रूपे सदा सचिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे रूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा ब्रिद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता।

तो पराधि समस्त स्थाम तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है देश है अपेस है।

है, निरुक्त स्वरूप है, तिरमुक्त विभूत है, परपुक्त प्रभा है, सुजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अभेदीन रूप है, समास्तो पराज है, सदा सर्वसार है।

निवास है, के सर्वर्गवान है, हमें सलरवान है, तमामर तमीज है, समाहतर अजीज है, परम परम ईस है, समाहतल अदीस है, अदेसर लेख है, अमेसले अपेख है,

मितो विभूत है, के मितो पासा है, के आतुम प्रभा है, के चलंग नांग है, के मितो पांग है, मद प्रशांत वे प्रसाद, मन मान प्रणाम, गुण गण मदाम, यार बरे गांज हर नर पर भांज, अन गण प्रणाम, जल थल अन गण प्रणाम, मन मन सलाम, हर नर अखंड बर नर अमंड, अन भवनास, मन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल मदाम, अन सिज अंग आसने भंग, उपमा पार गद मेते उदार, जल थल अमंड, दिस विषय भांड,

अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अबोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपर्मं गंजे लेखे भजंग प्रयासंद नमः तल प्रणासे नमः।

मान मलैया गाड़े गिड़ आणके तोड़न हार सबात नहीं चक चार लवैया साहेब श्री सब को हृदायक जाज कनेक सवेक देवैया दानव देव फरेंदन साचर भूत।

कल्याण उपाय हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुड़ न त्रिसना लागे आए एहो हर रस करमी पाइए सतगुरु मिले जिस आए कहे नानक होर अन रस सब विस।

पठाय, सात्यायन सुननैनो पठाय, शरीर लाय सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस माणी जित सुनी।

सुह है सो हमरी रचया करे बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

मंगल मधु माधव गावै, ललत बुलावल गावही अपनी अपनी पात। अठ पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र, द्वितीया मालको सके अलापे संग रागनी पांचो था पे। गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सिहती उचारी तनाश्री ए पांचो गाई। माल राग कौ सक संग लाई, मारू मस्त अंग में वारा। परबल चंड को सके उबारा, खौ खटियो पौरा नंद गाए। अष्ट माल कौ सक संग लाई, पुण्य आयो हिंडोल। पंच नार संग अठ सुत, उठे तान कलोल। गायन तार मिला वही, तेलंगी देव करी आई। बसंती संदूर सुहाय, सरसिहिरी लै पार जा। संग लाई पांचो आर जा, सुरमा नंद पास कर आई। चंद्र बिम मंगलन सुहाय, सरस बाण आहे बनोदा। गावे सरस बसंत कमोदा, इष्ट पुत्र मैं कहे सुवारी। पुन्य आई दीप की बारी, कछली पट मंजरी। टोडी कही आलाप, कामो दिया गुजरी। संग दीप के थाप, कालंका कुंतल अवराम। कमल कुसुम चंप के नाम, गौरा कानरा कल्याणा। इष्ट पुत्र दीप के जाना, संभल श्री राग वै गावे। पांचो संग बरंगन लावे, बैरारी करनाटी तरी। गवरी गावे आसावरी, तै पाछे सिंधवीया लापी। श्री राग स्यों पांचो थापी, सालू सारग सागरा। और गोंड गंभीरा, इष्ट पुत्र श्री राग के। गोंड कुंभ हमीरा, खष्ट अमीग राग वै गावे। पांचो संग बरंगन लावे, सोरठ गोड़ मलारी। तुनी पुन गावे आस, पुन गावे आसा गुण गुणी। ऊचा सुर सोहो पुन किनी, मेघ राग स्यों पांचो चीनी। बैरा थर गज थर केदारा, जबली थर नट अहु जल तारा।

पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

कर किरपा प्रभ दीन दयाला गुण गावु रंग राता रहाउ सतगुर नाम निधान दृढ़ाया चिंता सगल बिनासी कर किरपा अपनो कर लीना मन वसिया अविनासी।

0: जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने सेवक परिवारों पासों श्री अखंड पाठ साहिब की सेवा ली, उपरंत गुरु महाराज के हजूर दरबार में शब्द कीर्तन होए, परिवारों की चढ़ती कला वास्ते संगत वालों गुरु महाराज चरणा चरदास बेनती हुई, गुरु महाराज हुक्मनामा बख्श किए, गुरु महाराज कृपा कर सारे परिवार सिर से मेहर चढ़ती कला दाता बख्शन। परिवारों वालों अच्छी संगत का तय दो धनवाद है, तय दिलो धनवाद है जी। अते परिवारों वालों संगतों वास्ते लंगर प्रसाद तैयार है, आप सब ने छके जाने की कृपालता करनी। हूँ सुगन साहज के पाठ प्रारंभ हो गए, बाणी नाल जुड़ना करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ

Mani. Prabhu ke suno hoy so phala, Prabhu ke suno so phal phala, se sumra jane aap sumraye, nane ta kala gopai. Prabhu ke suno sabte ucha, Prabhu ke suno udre mocha, Prabhu ke suno trishna bujjaye, Prabhu ke suno sab kaje sujjaye. Prabhu ke suno nahi jamtra sa, Prabhu ke suno purnaya sa, Prabhu ke suno man ki mal jaye, amrit namrit mahe samaye. प्रभु जी बसव साध की रसना नाने जन का दासन दसना प्रभु को सिमर से तनवंत प्रभु को सिमर से पतवंत प्रभु को सिमर से जन परवान प्रभु को सिमर से प्रग प्रधान प्रभु को सिमर से बमोचाजे प्रभु को सिमर से सर्व के राजे प्रभु को सिमर से सुखवासी प्रभु को सिमर सदा विनाशी सिमरते लागे जिन्हें आप दयाला नानी जन की मगर वाला प्रभु को सिमरत से परोपकारी प्रभु को सिमरतन सद बलिहारी प्रभु को सिमरत से मुख सुहावै प्रभु को सिमरतन सुख बिहावै प्रभु को सिमरतन आत्म देता प्रभु को सिमरतन निर्मल रीता प्रभु को सिमरतन अंध कनेरे प्रभु को सिमर बस हर नेरे सन कृपाते अंधन जाग नानक सुनन पूरे पाग प्रभु के सुनन कार्य पूरे प्रभु के सुनन कबहु न चूरै प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन चाय सुमानी प्रभु के सिमरन ने चले आसन प्रभु के सिमरन कमल बिगासन प्रभु के सिमरन नह चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पार सिमर से जन जन को ब्रह्माया नानक तिन जन सरणी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर तम लाग भेद पाए हर सिमरन पाए सद जति जाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन तारी सब चरणा सिमरत सिमर हर कारण करना हर सिमरन के सगले आकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिस

हर नाम जन का परे न पंग, हर का नाम जन की बटे आई, हर का नाम जन स्वभा पाई, हर का नाम जन को पोजोग, हर नाम जब कितना बेहोग, जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा।

काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर के कथा नाम सुरंदर दुख लथा नाम क्यों मा संतर दवसाय संत प्रताप द्रव सब नसाय संत का संगवट भागी पाया संत के सेवा नाम त्याया नाम तुल कछवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए सुलोक बहुत

మనకి మేలనతంతే జాత హృదయ కబ సాధన కరే మంతే కబౌ నా భిక్షరాయ జాలతో వైభవ దయానీత సుదకాయ కాచి పీత మనార్కే నాం కి మౌచ నానక నా ఉదర పతత బహుమూచ బహుత స్యాణప జమకా పవ్యాపాయ అనగ జతన కతుర సున్న నా తరాపాయ పేఖానే కాగన్నే భుజ కోట పావ దర్గానే సిజ్జ छोड़ सुनायो बेहाल मो ब्या पैमाया जाल अवर कर तू तगले जम डाना है गो बन भजन बिंदल नहीं माने हर का नाम जब दो जाए नानक बोले साई सुभाय चार पदार्थ देखो मांगा साजना किसे वाला गय देखो अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे देखो अपनी शोभा लो रे साथ संग हूं मैं छोरा देखो जन मरण ते डरा सा जना की तरणी परा जे जन को प्रभ दर्श पया सा नानी ता कह बल बल जा सा सकल पुरख में पुरख प्रधान सा संजा का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिया सब ते ऊंचा जा का मन सगल के रे नारा नाम तेरे कड़कड़ ती नाम ने अपने ते बुरा मिटाना पे कह सकल सिष्ट साजना सुख दो जन समुद्र चेता नान पाप नहीं ले पाने तन को तन तेरो नान तामे को नाव तेरा तावन माने को प्रभ तेरो मान सकल कटा को देवो दान कर्ण करावन हर स्वामी सकल कटा के अंतर जामी अपनी कदम जानो आपे अपन संगा प्रभ राते तुम रे हो तो तुम ते हो नान कवर न जान सकोय सर्व धर्म में स्वय धर्म हर को नाम जब निर्मल करम सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा सुंदर मत मन हरिया सगल उद्यम है उद्यम पला हर का नाम जप जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को दसु रसन खानी सगल थान ते उत्तम दान नानी दे कटवस हर नाम सुरोक

रमैया के गुण चेत पराने कौन मोलते कौन दिताने जिनतो साज सुवार स्वीकारया घर भगन में जिने उबारया बार व्यस्त तुझे प्यारा दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरध प्याओ पर स्वाग सैन मुख प्याओ बैठ को डैन एह नेर गुण गुण कछु न बुझ है बक्सले तो नानी से जय दे प्रसाद तारी ऊपर सुख बस है सुत प्राथमित बनता संगा स्वाय जय प्रताप में से तल जला सुखदायी पवन पाव कमला जय प्रताप गय सब रसा सगत सुमगरे संग साथ बसा दीने हस्त पाप करने ते रचना तुझे त्यागवर संग रचना से दो करुणांत व्यापे नान काढ़ लो प्रभ व्यापे आदंत जो रख नार दसो प्रीत न करे गुवार हो जाके सेवा नर पावे ता सो मुड़ा मन लावे जोठा करता सदा हजूरे ता को अंधा जात दूरे जाके टहल पावे दरगा मान तब सारा मुदे जान सदा सदा पूर्ण हार नानक राख नार पार तुम त्या कौटे संग रचे सात छोड़ झूठ संग मचाए जो शरण सुवस्त्र कर मान जो मन सो दूर फरान छोड़ जाए सुसका शरण करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप तारे तो करत प्रीत भसम संगो अंध को मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लो प्रभ दयाल करतूत बसु की मान जा लोग बेचारा करे दिनाल बार पे खंतर मल माया छब स नाहे गज करे छुपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अगन बार तन स्वावगल पात्र कैसे दरिया था जा के अंतर वसै प्रभाप नान तेजन सह सुमा सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गए ले ओढ़ निभावे कहाँ बुझारत बुझे डोर निष्कै तो समझे पर बसन बुध का भय गुंग जतन करे तो बिसर भंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तुम सुगवन

नानक राख लो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पे अरदास जीव अपन सब तेरी राह तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत चेते ऊचा भगवंत सकल समग्री तुम रसो तरतारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी खत्म तुम्हें जाने नानक दास सदा कुर्बानी सो लोग

विकराल मिथ्या रथस्य सुवस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या द्रोह मोहाभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान आशीर्वाद सार के चरण नानक जाप जाप जीवे अर के चरण मिथ्या सुन पर निंदा सुनया मिथ्या पर दर्भ को हिरया।

जा चुका है। जय प्रसाद सुने करना जय प्रसाद पे खै बसमा जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुत है जय बसना जय प्रसाद हस्त कर दलै जय प्रसाद संपूर्ण भलाय जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुत है समावे ऐसा प्रभु त्याग कतला गो कृपा सा नानक मन जागो जय प्रसाद।

प्रभु कृपते हो प्रकाश प्रभु दया ते कमन विकास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम हो श्रमधान प्रभु तेरी मैं आप गजुन के नू लाया जेत जेत लाभ तेत लगा हरनाथ नानक किन कह कछु न हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुनमिता नानक ब्रह्मता साधना की आचार्य कथा स्वदी स्वाद के संगमुख जल हो तो सात संग मन सुख लिखो तो साग संग मटे अभिमान साग संग प्रगटाय सो ज्ञान साग संग जय प्रभु नेरा सात संग सवोतन बेरा साग संग पाए नाम रतन साग संग एक ऊपर जतन साध के मामा बने कौन पराने नाने साके शोभा ब्रह्मा सुमाने साग संगा गोचर मिलाए साग संग सदा पर फुलाए साध के संगा बस पंचा सात संग वृतरस पंचा सात संग सबके रहन साग संग मनोहर बहन साग संग न कर तू तावे सात संगा सच मन पावे

स्वागत संघ लोक तारा स्वागत संघ नर पर हरा स्वागत संघ यहाँ वहाँ सोहेला स्वागत संघ बेचर थार मेला जो इच्छा सोई फल पावे स्वागत संघ नावे पार ब्रह्म साध रसाय नानक दृढ़ साध सुन रसाय स्वागत संघ सुनो हर नाओ स्वागत संघ रखे गुण गाओ स्वागत संघ नमन थे बिसराय स्वागत संघ स्वर पर निस्तराय साधु के संग लगे प्रमिठा साधु के संकट का डिठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संगत पै हमारी साधु के संग बटे सब रोग नान सा बेटे संजोग साख महिमा वेद न जाने जिता सुने तेता बकिया न है साध गु माता गुण ते दूर साख मारे प्रभुर साख सुबह का ना ही अंत साख सुबह सदा बेअंत साख सुबह उचे उचे साख सुबह मुचे मुची

ब्रह्म ज्ञाने सदांदर लय जस धर्म कमला लेप ब्रह्म ज्ञाने सदांदर दो जस सुर सर्व कौशोक ब्रह्म ज्ञाने के दुष्मान जस राज रंकोला कर तुलपवान ब्रह्म ज्ञाने के हृदय गम सदा को खुद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञाने का गुनाओ नाने दे पाव कस स्वभाव

महिमान। ब्रह्मज्ञानी देवता मन अपने सप्ते निचा ब्रह्मज्ञानी सृजन पय नानी जन प्रव्याप करे ब्रह्मज्ञानी सगल किरे नाथ राज ब्रह्मज्ञानी चिन्ना ब्रह्मज्ञानी के सब प्रमाया ब्रह्मज्ञान गज बुरा न पया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी के दृष्टम व्रत बरसी।

विनाश। ब्रह्मज्ञानी के गृह विश्व महा ब्रह्मज्ञानी परोपकार महा ब्रह्मज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्मज्ञानी लतावत बंदा ब्रह्मज्ञानी क्या हुए सुफला ब्रह्मज्ञानी सुफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदारणा ने ब्रह्मज्ञानी जपाय सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी क्या के रंग ब्रह्मज्ञानी क्या वसा प्रभसंग ब्रह्मज्ञानी के नाम अदार ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्मज्ञानी सदा सजाग ब्रह्मज्ञानी बंते आग ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुचय निवास नानी ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संगता। ब्रह्मज्ञानी के वचन ब्रह्मज्ञानी का निर्मन ब्रह्मज्ञानी जस कर प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रता। ब्रह्मज्ञानी का दस बुढ़ बाकी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्मज्ञानी को खोदे महेश्वर नानी ब्रह्मज्ञानी आओ परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाये ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा देश। ब्रह्मज्ञानी का गति ना दाया दाकर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन बखान ब्रह्मज्ञानी की गल ब्रह्मज्ञानी जाने।

प्रहत ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार ब्रह्मज्ञानी आम निरंकार ब्रह्मज्ञानी के सब ब्रह्मज्ञानी बने नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उड़ता रह जो अंतरनाम सर्व में पेख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगल सुतार है अस्पति मिथ्या नाई रसना परस मन में प्रेम निरंजन दर्श परतरे रूप न बेख नेत्र कर्ण सुन काव की निंदा सबसे जाने आप उसको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर रहे मन की वासना मन तय ठरा इंद्र जत पंदो ते रहत नान कोट मेको ऐसा परस वै सुनो सो जिसो परसो प्रसन्न विष्णु की माया थो पैन कर्म कर तो अन्य कर्म तुदन का निर्मल धर्म काल के चाणी बाचाय केवल भगत कीर्तन संग राचाय मान तन सिमरन गोपाल सब प्रभु कृपाल आप दृढ़ नाम जपावै नानक वैसन परम गत पावै भगवती भगवान भगत का रंग सगल त्याग दुष्का संग मंत्र विंस सगला परम कर पूज सगल पार ब्रह्म सासंग पाप अमृत हो वै तुझ भगवती की मति उत्तम हो वै भगवंत की डर कर नित नीत मंत्र अर्पय विष्णु परीत हर के तन हृदय सावे नानक भगवती भगवंत को पावे सुपंडित मन प्रभु दे राम नाम आत्म में शुद्ध राम नाम सार रस विवे स्पंड के उपदेश जग दिवे हर की कथा हृदय सावे सुपंड प्रजो नावे भेद प्राण स्मृत बुझे मूल सुखम जन सुल तो वर्णा को दे उपदेश नानक स्पंड को सदा देश बीज मंत्र सर्वो ज्ञान चो वर्ण में जप को नाम जो जो जप की गो सास पावे जन को एक कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मुगत पात्र को तारा सर्वरो काव खुद न्याम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काव जगत के न पाइय धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास सातम राम तिस नद्रिया दास दिसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट अरदान सोदा दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिता को सब सो जी पराए

नृणाओ आपे गण ग्रामंजो प्रपावे सोये बन हो पत्र व्यापन अंतरंग लखन जाय पार ब्रह्म क्या रंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसे मध्य सप्रगास पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पह निहाल सुलोक उस्तत कर अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रभर जे बहु विद अनेक प्रकार अष्टपति कई कोट हो पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट मन भरम उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी स्रोते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट काव काव विचार कई कोट नवत नाम त्यावे नानक करते कांत न पावे कई कोट अभय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिघात ने कोर कई कोट पर दर्व को कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया सुरमाय कई कोट दो प्रदे परमाय जित जित लाभ तत तत लगना नान करते के जाने करता रचना कई कोट सत जति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखे सर्व पाए कई कोट पाथर बृख निभाए कई कोट पुण पाणी बसंतर कई कोट देह भूमंडल कई कोट सस्यर सो नखत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सुतारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निसारे कई कोट राज तामसत कई कोट वेद प्राण सिमर तर स्वास्थ कई कोट किया रत्न संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किया चर जीव कई कोट ग्रीम स्वरण थी कई कोट

जगदीश जीवन शब्द की रात कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी गुणता अपनाई नाने दिव्य देख बढ़ाई इसका बल ना इस साल कर क्राम सर्व को नाथ आज्ञा कारी वप्र जियो जो तुझ पावे सोई पंथियो कब उच नीच में बसा कम सो घर रंग हसाए कबो निंद चिंद व्यवहार कबो वकाश प्यार कबो बेदा ब्रह्म विचार नानका मिला मनहार कबो निंद करे भोपाल कबो सोए रहे दिन राल कबो महाक्रोध विकराल कबो सर्व की ओत्र वाल कबो है पह राधा कबो विकारी नीच का साजा

अंतर हो ज्ञान प्रकाश हो स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम हृदय करंग सदा वसे पार ब्रह्म के संग जो जन्म जलाय कटाना तुम ज्योति संग जो सुमाना मिट्टी के गुण पाए विश्राम नानी प्रभु के सद कुर्बान स्वरूप।

नानक गर्भ गले उत्पति जिसके अंदर राज अभिमान है सो नरपति हो सुहान जो मैं जो बनवंत सो वत बिचा का जंत आपस को करवंत का वह जन्म रो जोन परमावे तान भूमिका जो कराय गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कर भा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक्या अमृता का सुख पावे धनवंता वे कर कर भावे तृत मन का संग न जावे बहुलस क्रमान कुबर करे आस पर मित्रता का विनाश सब त्यो आप जाने बलवंत किन में दाय पशुवंत किस न बदे आप करे तरम राय तो करे खुआरी गुरु प्रसाद का मिटे मान सो जन्ना ने दरगाह परवान कोट कर्म करे हो तारे शरम पावे सगले बिरतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर अवतार अनक जतन कर आत्म इंद्र वह हर दरगाह को कैसे गवे आपस को जो भला खावे तिसे भलाई निकट नावे सर्व किरे इंद्या का मन होय को नाने तंके निर्मस होय जब रजा ने मुझे कचोय तब को सुख नाई कोय

संत का दुखी अंदर ते तोता ज्यो सास बिना मृत के लोता संत का दुखी के जड़ के चनाए अपन विद्या पे ही खाए संत का दुखी का अवन रख नार नान संत पावे ता ले बार संत का दुखी बोले लाए ज्यो जाल बेहून मछली तड़फड़ाई संत का दुखी भूखा नहीं रहते ज्यो पाव के दन नहीं त्रापाए संत का दुखी चुटिया केला ज्यो बुआर तिलके तुम्हारे दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी समित्या कहत कीर्तन देखा तुरी पया नान जोत पावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा स्वकाई है संत का दुखी ना मरै ना जीवाई है संत का दुखी की पूजा न आसा संत का दुखी चले निराशा संत का दुख ना तुझा कोई जैसा भावे तैसा कोई होए पिया कीर्तन मिटे कोई नानक जाने सच्चा सोए सब करते करने हार सदा सदा तिस को नमस्कार

निरंजन जानिया गुरुप्रसाद अपना आप सोच जाए तिलके जान तना बुझ जाए सा संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत।

कर्मान जोगित करा सुप्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभा होवे सोए करने हर पचान सोए प्रभु के जन मिट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिससे जैसे

परसानी अविनाशे ब्रह्मन मेराख मन केतु प्रे त्याग तस्ते प्रणायत को सर्व निरंतर को सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गैर सुजानना

नाम के तारे प्रिया सब हमन नाम के संग दुरे सुन सर बन कर करो आज सपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत दान पर चल केवल प्रधान करत होत सत सजा के बाणे सब पर समय सुमाने सतकर्म जाके रचना सत मूल सत सत युद्ध पाद सत करने निर्मल निर्मल जो सब जाए ते सह सब भले सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सात वजन सात उपदेश हो सात जन जा के हृदय प्रवेश हो सात नृत्य दे कोय नाम देवता के गत हो आप सत किया सब सत आप जाने अपने मित गत जिसके श्रेष्ठ सो करने हार और न बोध कर विचार करत कीमत न जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया बेसुन बेसुन पै उसमा दिन बोझा तथा सुहाद प्रभु के रंग राज जन रहा है गुरु के वचन पदार्थ ला है ओए दाता है तो काटनार जन का संग तरह संसार जन का सेव सोड़ पागे जन का संग एक लिव लागे गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक पल पावे सुरोग आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सब प्रतनार पूजा सत सब सेवदार दर्शन सत सब पिकनार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवतारी आप गुणकारी शब्द सत सब प्रभुता सुरत सत सत जसुंता भोजनार को सत सब होए नानी सत सब प्रभु सोए सत सुर जन मान्या कर्ण क्राम मोर पछान्या जा कर देव स्वा प्रभाया तदगंध मन प्रगटाया पैत निर्भो बसाना जिस तव जय तुम्हारे सुमाना बस तुम्हारे बस गाये तंग बिन न कहना जाय बुझे बुझ नार बबे को नारायण मिले नानके को ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन पर तीत ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेव नाम के रंग सेवको प्रपालना रसव कीरा केन्द्रंकारा सो सेव दया प्रवता रहे नानी सो सेव सामारे अपने जन का पर जटा के अपने सेव के सार पर रख है अपने दल को देव डाई अपने सेव को नाम जपाई अपने सेव किया पदरा के तंगे आत्म को न लाके प्रक सेव को न पहुंचा प्रक सेव को ते ते जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानी सो सेव दया दिल प्रगटाया निके गिरी में कदरा के बसम कर लश्कर कोट लाके जिसका साधन करता उतना को राख दे करा मानो जिसन करत बात कर तबिरथ जात मारण राखे वन को सर्व जिया कह राख सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रवाला कविंडाणी बार बार बार प्रभु जपिए पी अमृत हो मन तंत्र पिए

बोलो जजे बाजन रात प्रभु अपने जन की निदात करा भगता तुम क्या चाहे प्रभु अपने सोरा सुमाए जो हुआ वह सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पहचान जिसकी महिमा कौन बखाने हो जिसका गुण का एक न जाने हो आठ पैर प्रवस्था जो रखा उन्होंने सही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मंत ने अपना तिन जन दे जेने

कर तो है न कामे तुझको और प्राप्त स्वामी जी अपनी कृपा जिस आप करे नाने सो सेवा कर के मात ले बेस विश्व अगर काम नमाने सो सेव परमेश्वर की गत जाने सो सात गुरु तो सर दया रणाम एक बार गुरु को बल जाऊं सर्व निधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म में क्या नहीं काज पार हम सहस ज्ञान बलियान जाये नानक ऐसा करुण पागे पय सबल दर्शन पे कत बने सब पार सत चरण गत निर्मल रीत पेट संग्राम कुंड पार ब्रह्म के दरगाह गावा सुनकर भजन करना गाने मन सुन तो का दंपति आने

अपने च प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए बंधु जन आई कोय सर्व निरंतर कसोई उद्भुत रव्या रूप रंग पै प्रकाश साधक संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बान नानक बलिहारी स्वलोक साथ न चले बिन भजन विखिया सगले चार हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार। अस्पति संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार और अपा समेत विसारो चरण कमर रिदमा और उतारे करण कारण सोबर समरथ दृढ़ कर गौर नाम हर वत एहो धन संचो होवो भगवंत संजना कर निर्मल मंत एक आस राखो मन माए सर्व रोग नानक मुंड जाए जिसन को चार गुणता वै सो तन सेवा ते पावे जिस सुख को नित वाचे मीत सो साधु संग परीत जिस शोभा को करा भले करने सा शोभा पजार किसनी अनक पावे रोग न जाए रोग मुंडिया रो खदलाए सर्व निधान मेरे नाम निधान जपना ने दर गए परवान मन पर बुद्ध हर के नाय दैता त्या बेटा है ताको बिगना लागे कोय जा करे दब सब बस हर सोए कल ताते ठंडा रणाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पवन चय पूर्ण हो आस भगत पाए आत्म प्रगात तित कर जाए बस बिना सिको नान काटे जम बासी तद विचार कह जन साचा धर्म मरे सो काचो काचा आवागन मिटे प्रभ सेव आप जाग सुन कर देव रतन जन्म का हो उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनको भावना चुट नार सिमर सात वेद विचारे हर के भगत करो मन लाए मन वचन नानी फल पाए संग ना चाल तेरे तना तुम क्या लपटा में मूर्ख मना स्वतमित कुटुंबर बिनता इनते कहो तुम कवन सुना था राज रंग में विचार इनते कहो कवन छुटकार असस्ती रथ स्वारी चुटा डम चूट पास सारी जिन दिया तस बुजना बिगना नाम ता नाने बचाना गुर की मत तू ले आने भगत बना पर डूबे चाने अर्घ्य करो मन में इंद्र मलोय तुम्हारो चीत

जाचक जन जाचे प्रवधान कर कृपा देव और नाम साधना की मंगत पार ब्रह्म श्रद्धापुर सदा सदा प्रज्ञा गृंगाव सा आवचरण कमल सोला के प्रीत भगत करो प्रभु के नित नीत कोटे को आदान नान मे नाम प्रभ सार प्रभु की दृष्टि में सुखो पाय बिरला कोय जन चाख्या से जन त्रिवता ने पूर्ण पुरुख ने डोला ने सो पर परे प्रेम रसरंग उपजा अवसाद कै संग पर शरणान सब त्याग अंतर पर गासन दिन लाव लिव लाग बुढ़पा की जप्या पर सोये नानक नाम रते सुखोय सेव की मन सब पूरी पे सदगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ हो दयाल सेव की नो सुधा निहाल बंधन काट मुझे जन पया जन मरण दुख प्राम ज्ञान पुण्य श्रद्धा सतु पूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया।

नेत्रोपेख दरस कोय मन बेसा सा चरण तोय भगदना के मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बाजी जे कर्मया गुरु प्रसाद नाम जप लाया ताकि उमा कह न दाय नारग्रया सर्वसमय प्रभक सुन दयाल भगत सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल।

गुरु भगवान सर्व वैकुंठ मुगतमो गवाए एक निमकर के गुण गाए अनकराय भोग बढ़ियाए हर के नाम की कथा मन पाए भोजन का प्रसंग हित रसना जब ठियर नीत पाली सुकरणी शोभा धनवंत हृदय से पूर्ण गुरु मंत्र सत्संग प्रभु देहो निवास सर्व सुगना प्रगा श्लोक

फिर जा बृहस्पति जाब आकार एक अचना दृष्टि पापन तब कहते हो तद अवतारी आपन सुन समाद तब बैर ब्रो के शंख माद जब इसका वरण चैन जाबत तब हर सोग कहो के सब आपत जब अपने आप आप पार ब्रम तमो कांके सोवत परमा

ceremony अवतारे जब नरगण प्रभु साहब सब आए तब सब जगत को गिदाए तब आपे आप अपने जो तर तब कवन डर कमन कत डरे आपने चलता करने हार नानी ठाकुर का मुया पार बिना शिशु के आपन आसन त जनमन कहो का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम के त्रास कहो के सोए जब अभिगत गोचर प्रवेखा तब चित्र गुप्त कर पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोत्र गादे तब कौन छुटकन बंदर बादे अपन आप आपे चरदा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्वर्ग वर्ग पत होता तब मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंका निर्वाण तक कौन गुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश हो तय छल छिदर लगत को किस जय ज्योत स्वरूप ज्योत संग समावै जय के सब का मंदिर बतावै करण करावन करने हारो नानक करते का नय सुमारो जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे परवीन तय पेद के देव का कोचीन जब अपने आप आप फिर उतारे तब सगन अब सगन का विचार है।

पैर पहार दोग सोग मान अपमान अनेक प्रकार के अभ्यान अपन के लाभ कर देखा है खेल संकोच नान के कह दया भगत भगत आप जय पसरा प्रसार सुन प्रताप।

तो भाई अपने पाने ले सुमाए। तुम ते पन नहीं कचो ए आपन सो सब जगत परो ए जा को प्रभु जीवा बजाए सतनाम सोई जन पाए। सो सुंदर सीतास का बेता नानक सगल सिट का देता जी जंत्र सबता के हार दिन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राके ते कोई न मारे सो मुआ जिस मनो भी सारे ते तजर कहाँ को जाए सब सर एक निरंजन लाए जी के जो

सेवा बनाई कम बुद्ध परम बद पाई इसे ऊपर नहीं विचारो जाके मन चंद्रन कार बंधन तो रुपये निर्वाह अंदर पुदा गुर के पैरे लोक सुखे पर लोक सुवे ले नानक बाहर प्रभाव पे मिल ले स्वास करो नंद गुण गावो प्र परमानंद राम नाम तो करो विचार दौर लाभ देखा करो उदार अम्ब

प्राण सिमरत में देख ससियर सूर्ण खतर में एक। वाणी प्रभु के सबको बोले आप डोलना कब डोला सर्व के लाकर के ला के मोल न पाया गुण मोल सर्व ज्योत में जाके जो तार रहो स्वामी और पोत गुर प्रताप ब्रह्म का नाम सुना तिर में विशाप संजना का पे कंसा ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुनो सब वचन सर्व्यापी राम संग रचन जिन जाता देश की रात सर्वजन साधु सब कह जो जो हो सोई सुख मान्य कर्ण क्राम नार प्रभु जान है।

खनहारा। सकल समग्र जाका तना पंजा स्वापित नाम दान खेल बनाए आज्ञा कार्य किन्नी माया सबके मद अलप तो रहे दुख कण सुपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नान जा पावे तन लय सुमाए।

पदे पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर फेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर के उतरे चंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना के धुर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सा संगन सागर तरो

आनंद करे प्रभु का जय। प्रगट गोपाल महंत के माथे नान कुदरतन के साथ है, शरण जो सुन शरण आए कर कृपा बुरा मिलाए, मिट गए बैर पै सब रेन अमृत नाम साम संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण सेव की सेवा जंजाल बिकार रहते, राम नाम संरचना कहते कर प्रसाद दिया प्रभु तारे, नानक ने भी खेप हमारी प्रभु की उच्चत।

0: गुण गुण कछु ना बूझे,
1: बक्षले ओतो नानक सीजे,
0: जय प्रसाद तार ऊपर सुख बसे,
1: सत बनात मनीत बनंता संग हसे,
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला,
1: सुखदाई पवन पावक मुल्ला,
0: जय प्रसाद पोगे सब रसा,
1: सगल समग्री संग साथ बसा,
0: दिने हस्त पाव करने तरसना,
1: जसे त्याव अवर संग रचना।

0: मिथ्या रसना भोजन सन्न सुवाद
1: मिथ्या चरण पर विकार को तावे
0: मिथ्या मन पर लोभ लवावे
1: मिथ्या तन पर उपकारा
0: मिथ्या बास ले तबकारा
1: बिन बूझे।

0: तिसको सिमरत परम गत पावे,
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर,
0: तिसे त्याए सदा मन अंदर,
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
0: आठ पै सिमरो तिस रसना,
1: जय प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा त्याए त्यावन जोग,
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे।

0: प्रसाद असव हस्त असवारी
1: मन जिस प्रभ को कबु नाम सारी
0: जय प्रसाद बाग मिलग तना
1: राग प्रोई प्रभ अपने मना
0: जिन तेरी मन बणत बनाई
1: उठत बैठ सत से त्याई
0: से त्याई जो एका लख
1: इहा उहा नानक तेरी रखे
0: जय प्रसाद करे पुन बोदान
1: मन आठ पैर का तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद को चार व्यवहारी
1: तिस प्रभ को सास सास सितारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभ सिमरो सदा रूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पात्र है
1: और प्रसाद ना

0: वासना
1: जय प्रसाद हस्त कर चले
0: जय प्रसाद सुपूर्ण फले
1: जय प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू प्रगट संसार
0: तिस प्रभ को।

0: साध की शोभा ब्रह्माय सुमनी,
1: साध के संग गोचर मिले,
0: साध के संग सदा पर फूले,
1: साध के संग आवे बस पंचा,
0: साध संग अमृत रस पंचा,
1: साध संग होए सबकी रेन,
0: साध के संग मनोहर बहन,
1: साध के संग ना कतमु तावे,
0: साध संग सत मन पावे,
1: साध के संग माया ते पहना,
0: साध संग नानक प्रभु सुपर सन्न,
1: साध संग दुश्मन सब मीत,
0: साधु के संग महापनीत,
1: साध संग के सो नहीं बैर,
0: साध के संग ना भीगा पैर,
1: साध के संग ना ही को मंदा,
0: साध संग जाने परमानंदा,
1: साध के संग ना ही हो ताप,
0: साध के संग तजे सब आप,
1: आपे जाने साध बढ़ाई,
0: नानक साध प्रभु बने आई,
1: साध के संग ना कब हूं तावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे,
1: साध संग बसता गोचर लहे,
0: साधु के संग अजर सहे,
1: साध के संग बसे थान ऊंचे,
0: साधु के संग महल पहुंचे,
1: साध के संग दिड़े सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
1: साध के संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु के करवान,
1: साध के संग सब कुल उधारे,
0: साध संग साधन मी

0: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कछ काल
0: दर्शन भेटत होत निहाल
1: साध के संग कलुखत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग इहां उहां सुहेला
0: साध संग बिछरत हर मिला
1: जो इच्छे सोई फल पावे
0: साध के संग ना बिरथा जावे
1: बार ब्रह्म साध रित बसे
0: नानक उतरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाओ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग ना

0: मन अपने है सरते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जान पाए
0: नानक जिन प्रभु आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर भया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की देश अमृत बरसी।

0: साध की टहल संत संग हेत
1: करण सुने काहू की निंदा
0: सब ते जाने आपस को मंदा
1: गुर प्रसाद बिख्या पर हरे
0: मन की वासना मन ते तरे
1: इंद्री जित पंच दोख ते रहत
0: नान कोट मदेको ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्णु की माया ते होए पिन
1: कर्म करत होवे न कर्म
0: तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बाचे
0: केवल पार्थ कीर्तन संग राचे
1: मंथन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब पर

0: जित जित कर रखे तैसा तिन नाओ
1: आपे करण करावण जोग
0: प्रपावे सोई फन होग
1: मसरो आप होए अन तरंग
0: लखे न जाए पार।

0: मंडल
1: कई को शशि और सूर्य नखत्तर
0: कई को देव दानव इंद्र सिर शतर
1: सगल समगरी अपने सूत तार
0: नानक जिस जिस पावे तिस संसारे
1: कई कोट राजस्थान सातक
0: कई कोट वेद प्राण सिमरत और सासत
1: कई कोट किए रतन समुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट किए चिर जीव
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण
1: थीवे कई कोट जख किनर पिसाच
0: कई कोट पूत प्रे सुकर मिर्गाच
1: सब ते नेरे सबूते दूर
0: नानक आप लब्त रिया भरपूर
1: कई कोट पताल के वासी
0: कई कोट नर्क स्वर्ग वासी।

0: राखे
1: कई कोट प्रभु को खोजनते
0: आत्मा पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्यास
0: तिनके ओ मिले ओ प्रभु अवनाश
1: कई कोट मांगे सत्संग।

0: संत का दुख तंत रहत
1: संत का दुख ही सद मिथ्या कहत
0: कृत निल का तो ही पाया
1: नानक ज्योति पावे सोई थया
0: संत का दुखी बिर रूप हो जाए
1: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सकाये
1: संत का दुखी ना मरे ना जवाइये
0: संत

0: के पूर्ण उपदेशे
1: पहुँच कर निरपा हो बसे
0: सगल ज्ञान मन ठीक है नसे
1: जिसका साथ है कृपा तहरी
0: सा संग जप नाम मरारी
1: चैत पाए चुके परम

सेवा ते सदा सुख पाया, अंतर शब्द रवे अगुणकारी। आपे मेल ले गुणदाता, होमे तृष्णा मारी। त्रै गुण मिटे चौथा वरते, एका भगत निरारी। गुरमुख जोग शब्द आत्म चीन, हृदय एक मुरारी। मनु आस्थिर शब्दे राता, एहा करनी सारी। वेद बाद ना पाखंड अवधू, गुरमुख शब्द विचारी। गुरमुख जो कमावे अवधू, जात सत शब्द विचारी। शब्द मरै मन मारै अवधू, जोग जुगत विचारी। माया को मोह भवजल है अवधू, शब्द तरै कुलतारी। शब्द सूर जुग चारे अवधू, बाणी भगत विचारी। हे मन माया मोहया अवधू, निकसै शब्द विचारी। आपे बक्से मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी। राम कली महला तीजा, अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सरमै दिया मुंद्रा कनी पाए, जोगी खिंथा कर तू दया। आवन जान विभूत लाए, जोगी ता तीन पवन जिन लया। ऐसी किंगरी बजाए जोगी, जित किंगरी अनहद बाजे। हर सियो रह लिव लाए रहाओ, छत संतोख पत कर झोली। जोगी अमृत नाम भुगत पाई, ध्यान का कर रंडा। जोगी सिंगी सुरत बजाई, मन दृढ़ कर आसन बैस। जोगी ता तेरी कल्पना जाई।

शब्द विचारी हर जियो जपी हर जियो सा लाही विछो आपने वारी नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सच्चे भंडारी अपने भगता नो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल धारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड साब किछ है तिसका आखण बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार न पावै बुझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द विसवारी काया कंजन शब्दे राती साचे नाए प्यारी काया अमृत रही भार पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोजे से ही पावहे होर फूट मुए अहंकारी बादी बिन से सेवक सेवहे गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत् ज्ञान बिचारे हम मैं तृष्णा मारी सतगुर दाता तिने पछाता इसनो कृपा तुम्हारी सतगुर ना सेवहे माया लागे डूब मुए अहंकारी चिचर अंदर सास चिचर सेवा कीचै जाय मिलिया राम मुरारी आन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रे प्रीत प्यारी तन मन वारी वार घुमाई अपने गुर बिठो बलिहारी माया मोह बिन सजाएगा उपरे शब्द विचारी आप जगाए सही जागे गुर के शब्द विचारी नानक सही मुए जे नाम नाचे ते भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया तृप्त रहे आगाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर पूरे की वड्याई रहाओ आपे करता आपे भुगता देनदार जग सबाई जो कुछ करना सो कर रहे अवर न करना जाई आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधै लाई तिसे सिरे वो ता सुख पाव हो सतगुर मेल मिलाई अपना आप आप उपाय लखना लखना जाई आपे मार जिवाले आपे तिसनो तिल ना तमाई एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई सेवट भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई आप रूप सियाणा आपे कीमत कहण न जाई आपे दुख सुख आपे आपे दुख सुख पाए अंतर आपे भरम भुलाई वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिर लोकाई जिनी चाखिया तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई एक ना ना वो आप भुलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई सदा सदा सलाहे हो संतो तिस तिस दी वड्डी वड्याई तिस बिन अवरना कोई राजा करत पावस बणत बनाई न्याओ तिसे का है सद साचा विरले हुक्म मनाई तिसनो प्राणी सदा त्यावो जिन गुरमुख बणत बनाई सतगुर भेटे सो जन सीजै जिस हृदय नाम वसाई सचा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रवया सब ठाई राम कली महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन्ही किया परवृत पसारा किन्ही किया पूजा विस्तारा किन्ही निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आना जाना वेसा रहाओ किन्ही गृह तज नव वन खंड पाया किन्ही मोन अतूत सदाया कोई कह तो आनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती किन्ही कहया हो तीर्थवासी कोई अन्न तज पया उदासी किन्ही भवन सब धरती करया मोहे दीन हार हार दर परया किन्ही कहया मैं कुल्हे वड्याई किन्ही कहया बाह बो भाई कोई कह मैं तन्हे पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्ही घूंगर किनरत कराई किन्हू वर्तने माला पाई किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हार हार हर त्याया किन्ही सिद्ध बहु चेटक लाए किन्ही भेख बहु थाट बनाए किन्ही तंत मंत बहु खेवा मोहे दीन हार हार हर सेवा कोई चतुर कहावै पंडित को खट कर्म सहत स्यो मंडित
ਕੋਈ ਕਰੈ ਆਚਾਰ ਸੁਕਰਣੀ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਸਰਣੀ ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸੋਧੇ ਮੇਰ ਨਾਮ ਇਹ ਮਨ ਨਾ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਬੂਜੀ ਤਿਸਨਾ ਮਹਾਂ ਸੀਤ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਘਰਿਆ ਮਾਟੀ ਕਾਲੇ ਦਿਹੋਰਾ ਕਰਿਆ ਉਕਤ ਜੋਤ ਲੈ ਸੁਰਤ ਪਰੀਖਿਆ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਜਿਨ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਰਾਖਨਹਾਰ ਸਮਾਰਜਨਾ ਸਗਲੇ ਛੋੜ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਦ ਬਾਪ ਮਹਿਤਾਰੀ ਦੀਨ ਜਿਨ ਦੀਏ ਭਰਾਤ ਪੁੱਤ ਹਾਰੀ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਦ ਬਣਤ ਬਣਤਾ ਅਰਮੀਤਾ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ

कद देखिए तात तद दोही। तिस सेवत मन आलस कर जिस विसरे एक निमख न सर। हम अपराधी निर्गुण यारे नाग सेवा ना कर मारे। गुर बोहित वडभागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया। राम कली महला पंजवा काहू बिहावै रंग रस रूप। काहू बिहावै माए बाप पूत काहू बिहावै राज मिलख वापारा। संत बिहावै हर नाम आधार रचना रसाच बनी। सब का एक धनी रहाओ काहू बिहावै बेदार बाद। काहू बिहावै रसना साद काहू बिहावै लिपट संग नारी। संत रचे केवल नाम मुरारी काहू बिहावै खेलत जुआ। काहू बिहावै अमली हुआ काहू बिहावै पर दर्ब खुचोराए। हर जन बिहावै नाम त्याए काहू बिहावे जोग तप पूजा। काहू रोग सोग परमीजा काहू पवन धार जात बिहाए। संत बिहावे कीर्तन गाए काहू बिहावे दिन रैन चालत। काहू बिहावे सो पिण मालत काहू बिहावे बाल पढ़ावत। संत बिहावे हर जस गावत काहू बिहावै नाट नाटक निरते। काहू बिहावै जिया हे हिरते काहू बिहावै राज मह डरते। संत बिहावै हर जस करते काहू बिहावै मता मसूरत। काहू बिहावै सेवा जरूरत काहू बिहावै सोदत जीवत। संत बिहावै हर रस पीवत जित को लाया तित ही लगाना। ना को मूण नहीं को स्याना कर कृपा जिस देवै नाओ। नानक ताकै बाल बल जाओ। राम कली महला पंजवा। दावागन रहे हर बूट मात गर्भ संकट ते छूट। जाका नाम सिमरत भाव जाए त्यासे संत जना राखे हर राय। ऐसे राखन हार दयाल जत कद देखो तुम प्रतपाल। रहाओ चल पीवत ज्यो तिखा मिटंत। धन बिकसै गृह आवत कंत। लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार। किरसानी ज्यो राख रखवाला मात पिता दया ज्यो बाला। प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राख कंठ लाए। जो अंतले पेखत होए आनंद गुंगा भक्त गावे बहु छंद। पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम भाव सगल उधार। ज्यो पावक संग सीत को नास ऐसे प्राचत संत संग विनास। ज्यो साबुन कापर उज्जल होत नाम जपत साब भ्रम पोखोत। ज्यो चकवी सूरज की आस ज्यो चात्रिक बूंद की प्यास। ज्यो करंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दयाल पए ताए चीत। दया धारी तिन धारण हार बंधन ते होई छुटकार। सब थान देखे नैण अलोए तिस बिन दूजा अवर न कोए। भ्रम पै छूटे गुर प्रसाद नानक पेख्यो सब समाद। राम कली महला पंजवा। जी जंद सब पेखी है प्रभ सगल तुम्हारी धारना। मन हर के नाम उधारना रहाओ खिन मैं थाप थापे कुदरत सब करते के कारना। काम क्रोध लोभ झूठ नंदा साधु संग बेदारना। नाम जपत मन निर्मल होवै सुख है सुख गुदारना। भगत शरण जो आवै प्राणी तिसीहा हुआ ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनेक बार कोट जन ऊपर नानक वंजै वारना। राम कली महला पंजवाष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन भेड़त पाप सब नासे हर स्यो दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार प्रमुखा नाम दृढ़ायन ते होय सखाई। रहाओ सकल दुख का डेरा भन्ना संत धूर मुख लाई। पतत पुनीत किन्ने किए खिन भीतर अज्ञान अंधेर बन जाई। करण कारण सम्राट स्वामी नानक तिसरण आई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिव लाई

काटियो साज शब्द बन आई, जन्म मरण का सहसा चूका, बहड़े कतहू ना ताई। नाम रसायन मंदराता, अमृत पी तृपताई, संत सांग मिल कीर्तन गाया, नेचल वस्या जाई, पूरा गुरपूरी मत दीनी, हार बिन आन ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी, नानक नरक न जाई, काल सियाणप उकत न मेरी, पूरा गुरु कमाई। जप तप संयम सोच है सोई, आपे करे कराई, पुत्र कलत्र महा बिखिया, मह गुर सच लाए तराई। अपने जीत है आप संभाले, आप लिए लड़ लाई, साच धर्म का बेड़ा बांधिया, भव जल पार तपवाई। बेस बेस मार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संभव, कल अंधकार दी पाई, अंतर जामी जीवन का दाता, देख तेरे तृप्त अगाई, एक ओंकार निरंजन निरपो, सब जल थल रहा समाई। भगत दान भगतां को दीना, हर नानक सच जाचै माई, राम कली महला पंजवा श्लोक, सिखो शब्द प्यारे, जन्म मरण की टेक, मुखूजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। मन तन राता राम प्यारे, हर प्रेम भगत बने आई, संत हो सतगुरु रखेप निभाही, संत हो हर नाम लाहा, दास को दिया, सगली त्रिसन उलाही, संत हो रहाओ। खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कहण न जाई, संत हो चरण कमल से लागो ध्याना, साचै दर्श समाई, संत हो। गुण गावत गावत भय निहाला, हर सिमर तृप्त अगाई, संतो आत्म राम रविया, सब आत अंतर कत आवै कत जाई, संतो आद जुगादी है पीहोसी, सब जिया का सुखदाई, संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है, पूरहया सब ठाई, संत हो। मीत साजन माल जोबन सोत, हर नानक बाप मेरी माई, संत हो। राम कली महला पंजवा, मन बाचक राम राम नाम उचितारी। घूमन केर महा अत बिखड़ी, गुरमुख नानक पार उतारी, रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा, हार जप मलन भय दुष्टारी, जिस ते लागे तिन्ह सब निवारे, प्रभ जीव अपनी कृपा धारी। उदरे संत परे हर सरनी, पच बिन से महा अहंकारी, साधु संगत इहो फल पाया, एक केवल नाम आधारी, ना कोई मूसूर ना कोई हीणा, सब प्रगटी जोत तुम्हारी, तुम सम्राट अकथ गोचर व्या एक मुरारी, कीमत कौन करे तेरी सकरते, प्रभ अंत ना पारा वारी। नाम दान नानक वड्याई, तेरिया तेरिया संत जना रहनारी, राम कली महला तीजा, नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया, सहज सेती मन वजिया, वाधाइया राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईया, शब्दोता गाव हरी केरा, मन जिनी वसाया, कह नानका आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तुसदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख

0: जत कत देखियै तत तत तोई, जिस सेवत मन आलस करै, जिस विसरिया एक निमख न सरै। हम अपराधी निर्गुण आरे, ना किस सेवा ना कर मारे, गुरबोत वडभागी मिलिया, नानक दास संग पातर तरिया। राम कली महला पंजवा, कहो बिहावै रंग रस रूप कहो।
1: राज मिलख वपारा, संत बिहावै हर नाम अधारा। रचना साच बनी

कहूं बिहावे लपट संग नारी संत रचे न केवल नाम मुरारी कहूं बिहावे खेलत जुआ कहूं बिहावे अमली हुआ कहूं बिहावे पर दर्ब चुराए हर जन बिहावे नाम ते आए काहू ब्याहावे जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमी जा।

हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिन की उत्तम बाता। तिन की पंक पाए वडपागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, सब सिद साधक मोन जना। मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी। हर लाख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए। नहीं चे